0: एमटी सी पहेगी कि आप बच्चे को त्याग चुम इनके गम स्कीन lawsociety.sk.ca उत्तर का गिया यमी इतना है ना का चीज़ ने का गी पिहती ने गो मा की शाश उत्तर को लॉ सोसाइटी उत्तर ने मी ने का गी पिहता वा गो को पहती तो शी शाय यमी चक ये यमी इतना चक ने मी दो सोता मोई और यह किन्हीं हित दो इतना वो यक यू ची पानी मुत्ता वो यक यह दासी मुत्ते को मीना मिच्छेफ ये यमित को मीना या सोरो मीना सो नीती सी पहेगी लॉ सोसाइटी.sk.ca
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: The Lac-La-Ronge Indian Band Health Services is accepting applications for their Memorial Scholarship. The 11th Annual Elder Catherine Charles Health Career Scholarship Fund is accepting applications. You can download the packages from their website, www.llrib.org. The deadline for application is Friday, September 25th. For more information, contact Anna Sanderson at the Lac-La-Ronge Indian Band Health Services Office, 306-425-9110.
3: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.